गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मंगलवार आज है और आई होप कि आज आपका सब कुछ कुशल मंगल हो। आरजी अदनान आपके साथ है। तो चलिए फिर आज की मॉर्निंग गुड करते हैं महात्मा गांधी जी के एक विचार के साथ। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। सच की ताकत इतनी बड़ी होती है कि धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींची लेती है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। आजकल की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अक्सर छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, कभी काम टालने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए। लेकिन सच ये है कि हर झूठ हमें अंदर से कमजोर करता है और सच हमें मजबूत। सोचिए अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ इतना ठान लें कि आज मैं सच बोलूंगा, चाहे हालात जैसे भी हो, तो यकीन मानिए ना सिर्फ हमारा मन हल्का होगा बल्कि दूसरों का भरोसा भी हम पर और मजबूत होगा। तो चलिए फिर इस मंगलवार की शुरुआत एक वादे से करते हैं कि सच बोलने का, सच जीने का, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। तो ये गांधी जी का संदेश हमें जिंदगी में एक नए बदलाव की ओर लेकर जाएगा। तो इसी के साथ आज के मॉर्निंग की एक प्रेरणा लेते हैं और आज के दिन का आगाज करते हैं इन द शो।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक लड़की थी जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, पर घर की हालत ऐसी कि ब्रश और रंग भी खरीदना मुश्किल था। सब कहते थे पढ़ाई कर, इन सब चीजों से पेट नहीं भरता। पर उसने ठान लिया कि कम से कम एक कोशिश तो करूंगी ही। कॉलेज की लाइब्रेरी से वेस्ट पेपर उठाया, घर पर पड़े पुराने कपड़ों से ब्रश बनाया और शुरू कर दी पेंटिंग। धीरे धीरे उसकी बनाई तस्वीरें कॉलेज की दीवारों पर पहुंचने लगी और एक दिन उसी लड़की को एक एग्जीबिशन का मौका मिला। वहां उसकी पेंटिंग लाखों में बिकी। आज वो लड़की प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जिसके पास अपना आर्ट स्टूडियो है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट साधन नहीं, बस एक परफेक्ट इरादा चाहिए। इसलिए इस कहानी का नाम मैंने रखा है करके देखो हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग ना तो पहली बार तो करते ही नहीं है, पहली नखरे करते कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन भाई करके देखो, क्या पता हो जाएगा या तो फिर एक नया अनुभव मिलेगा। ना करने से बेहतर है करके देखो हो ही जाता है। तो याद रखिएगा ये किस्सों का कारवा में बेहतरीन सी कहानी, और सुनते रहिएगा
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, अदनान आपके साथ है आज की मंगलवार वाली मॉर्निंग आपकी गुड़ी करने के लिए इन द शो
1: ऑल इज वेल अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
2: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: और इस मौके पर ना तो मैं आपको हर दिन एक गिफ्ट जीतने का मौका देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे पहेलियों का जवाब देना है।
3: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: तो आज की पहली कुछ ऐसी है कि जब हम इन्हें जलाए ये फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देखकर, लेकिन खत्म होने पर हम मुरझाए। बताइए ये क्या चीज है। फिर से दोहराता हूँ कि जब हम इन्हें जलाए ये फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देखकर, लेकिन खत्म होने पर हम मुरझाए। बताइए क्या चीज है। तो इसका जवाब है नहीं नहीं, आप मुझे बताओगे, डीएम करना इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, या तो फिर व्हाट्सएप करना 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जो सबसे पहले और जल्दी जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलने वाला है। सो जल्दी करे, देर मत करे, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहे।

0: Let's talk about mental health. You are listening to MGM 90.8 FM. All is एंड अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, एचओडी ऑफ एमजीएम यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। बाय द वे, जो 9 to 5 जॉब करता है या तो जो लोग जॉब करते हैं, उन्होंने एक चीज सुनी होगी कि ऑफिस बर्नआउट के बारे में बहुत सुना होगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है और इससे एक एम्प्लॉय कैसा जूझता है, तो मैम इस बारे में हमें बताइएगा।
1: वर्क बर्नआउट जो है ये बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होता है, और ये फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल, इनमें चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिजिकल लेवल पे वही है कि थकान लगना, बहुत बीमार लगना, और जैसे हमारा जो है भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, है ना। फिर इमोशनल में वही है कि रोना आना, मूड खराब रहना, हमेशा हारा हुआ महसूस करना, हम बोलते हैं ना आई एम फीलिंग डिफीटेड, फिर मोटिवेशन का कम हो जाना। और बिहेवियरल सिम्टम्स में आते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, हम है ना ढकेलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम बस एक्सक्यूज देते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्यों नहीं चाहिए। फिर हम आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमको फिर किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, हमको अकेले ही रहना है ऑफिस में। और प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है कि जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी हैं वो हम पोस्टपोन करते रहते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट सबमिशन है कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और फिर इन ऑल दिस देर आर हाई पॉसिबिलिटीज टू गो टू सब्सटेंस अब्यूज, है ना, कि जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, है ना। तो इन सब चीजों से मतलब हम सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जा सकते हैं। सो बर्नआउट ये 3 डायमेंशंस में हम देख सकते हैं। और स्ट्रेस जो होता है ये रहता है कि प्रेशर आना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है फिजिकली और मेंटली। तो स्ट्रेस्ड पीपल क्या है, दे कैन स्टिल इमेजिन एंड दे कैन स्टिल फील, चीजें कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन जब बर्नआउट होता है, सो बर्नआउट इज फीलिंग ऑफ नॉट इनफ, और इट्स अ फीलिंग ऑफ यू नो एम्प्टीनेस।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजी अदनान तुम चे सुबता है
1: All is well आरजी अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम तुमची फरमाइश पूर्ण करायला सो आज गाने की फरमाइश आई है प्रीत देशमुख की तरफ

0: बेचारा।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना है यार ये। तलत महमूद एंड लता मंगेशकर जी की आवाज में छाया इस फिल्म से गाना है, एंड भाई ने फरमाइश की है जिनका नाम है प्रीत, और भाई का नाम भी बहुत ही प्यारा है प्यारे गाने की तरह। तो चलिए फिर आप भाई की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। आनी हो तुम जिस का फरमाइश असल तरह हमारा व्हाट्सएप करा 9359320080 या व्हाट्सएप नंबर वर नंबर पुनः एक दायका 9359320080 आनी ऐकत रहा।

ओ काका, ओ मामा, ओ भैया, ओ दीदी, आप ऐसे कह रहे हो, आपने अपने गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है क्या? चेक कीजिए, नहीं लगाई ना, कब लगाओगे? समझते नहीं है यार। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हर एक गाड़ियों को कंपलसरी हो चुका है। 2019 के 1 अप्रैल से ये शुरू हो गया था, तो अब तक लगा था कि हर कोई अपने गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा देगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास बहुत टाइम है या तो बहुत बिजी है, लेकिन उन्होंने भी अब तक अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगाई है। तो आप प्रशासन एकदम स्टिक मोड पर आ चुका है। इसके पहले भी आया था, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सोच रहे थे कि लोग हैं, इंसान है, थोड़ा लेट हो जाते, लगा देंगे। बट अब तक बहुत सारे लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, तो आखिरी आपको वक्त दिया है, 30 जून के पहले आप अपनी गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा दीजिएगा। फिर 1 जुलाई से जिस गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रहेगा, उस गाड़ी पर कार्रवाई होगी और आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है बोलकर, पता चल गया ना, तो ये लगाइएगा। इस नंबर प्लेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। HSRP ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट के हिसाब से आप उस सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट चेंज कर सकते हो। फिर मत कहना कि यार मैं तो भूल ही गया, भूल जाओगे तो बड़ा पछताओगे, फाइन भी भरना पड़ेगा, समझे? स्टे ट्यून।

आपको पता है आने वाले वक्त में यानी कि 10 से 15 दिन में अपने शहर में कितने शादियां होने वाली है? यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। तकरीबन 13 से 14 दिन के अंदर ना तो अपने छत्रपति संभाजीनगर में 2000 से भी ज्यादा शादियां होने वाली। जी हाँ, और टोटल मिलाकर 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस अपने शहर में होने वाला है। भाई साहब, 13 14 दिन में 2000 से ज्यादा शादियां, कारण की अधिक मास संपला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा लग्न सराई सुरू झाली आणि 2000 लग्नामध्ये तुमचा नंबर आहे का यावेळेस? क्या इस बार भी आपण म्हणणार नाही करूयात ना, पुढच्या वर्षी करूयात? भाई साहब, आप अगर शादी कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस बार भी इन 2000 शादियों में आपकी भी शादी रह गई और इस साल भी आप सिंगल रह गए। अगर आपकी एज 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गई तो आप सिंगल नहीं रहते, आप बिना शादी के रह जाते हो। तो यह एक ऐसा दुनिया का देखने का नजरिया है। भाई मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का, बट मजा आती है ना, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ भी आजकल हो रही है। जब भी घर पर जाओ, कोई रिश्तेदार आए, कोई आंटी आई, कोई अंकल आई, तो एक ही सवाल पूछते हैं, हाँ शादी कब कर रहा है? ये चीज आपके साथ भी होती है ना, जब भी करना सोच समझ के करना शादी। इतना ही मैं कहूंगा, अगर इन 2000 शादियों में आपका नंबर होगा तो मुझे भी इन्वाइट कीजिएगा, हम तो आ ही जाएंगे भाई बेगानी शादी में। अब्दुल्ला दीवाना, स्टे ट्यून।

लेट्स टॉक अबाउट फिल्मी बातें. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है. एंड फिलहाल फिल्मों के साथ OTT सीरीज की भी बहुत चर्चाएं हो रही है. ग्राम चिकित्सालय TVF ने बनाई हुई ये सीरीज थी. इसका पहला पार्ट बहुत अच्छे चला, इतना सुपरहिट तो नहीं हुआ था लेकिन बहुत अच्छी इसने पॉपुलैरिटी हासिल की थी. तो अब इसका सीजन 2 भी आ चुका है, तो जाकर आप देख सकते हो. और पंचायत सीजन 5 कब रिलीज होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है. TVF ने अब तक इसका कोई जवाब तो नहीं दिया है. कहा गया था कि जून या जुलाई में रिलीज डेट अनाउंस होगी लेकिन अब तक तो कुछ रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. कमिंग सून सही बता रहा है. और इसी के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 रिलीज हो चुका है, तो ये भी आप देख सकते हो. इसका सीजन 3 आ चुका है. मैंने तो इसका अब तक फर्स्ट और सेकंड सीजन भी देखा नहीं है. रिसेंटली रिलीज हो चुके हैं 2 सीरीज, ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 एंड हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3. तो जाकर देखिएगा कैसी लगी, ये भी जरा मुझ तक आप पहुंचा सकते हो DM के जगह इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर. एंड स्टे ट्यून्ड.

0: मेरी एक इच्छा है यार, मुझे भी लोग वीआईपी जैसा ट्रीट करे। अब ये इच्छा मेरी और आपकी भी पूरी हो सकती है। सच्चे गहरा झूठ बिल्कुल मैं कहता नहीं। हेलो फ्रेंड,
1: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

93.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूँ आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well. RJAdnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। शो के स्टार्टिंग में ना तो हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: और इसमें मैंने आपको एक पहेली पूछा था कि जब हम इन्हें जलाए ये फूट फूट कर रोने लग जाए, खुश होते हैं हम सब देखकर लेकिन खत्म होने पर हम मुरझाए, बताइए ये क्या चीज है। और इसका जवाब है पटाखे। जी हाँ, पटाखे। जब हम इनको जलाते हैं ये फूट फूट कर रोने लगते यानी कि बजने लगते हैं और हम खुश हो जाते हैं और फिर ये खत्म होने के बाद मुरझा भी जाते हैं ना। सो एकदम सही जवाब दिया है प्रेम काले ने। सो कांग्रेचुलेशन प्रेम भाई, बड़े ही प्रेम से आपने इस प्रेम वाली पहेली का जवाब दिया है। सो थैंक यू सो मच और दिस ब्यूटीफुल जवाब। सो दोस्तों ऐसे ही मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए और सुनते रहिए।
1: All is well, RJ and Anand ka morning show, freshness light radio ka flow,
0: on MGM 90.8 FM.

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Anand ka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
3: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
3: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, किसी का दिन काम में व्यस्त रहा होगा, किसी ने पढ़ाई की होगी और किसी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए होंगे। दिन चाहे जैसा भी हुआ हो, शाम का समय हमेशा हमें एक छोटा सा ब्रेक लेने का मौका देता है। ये वही समय है जब हम दिन भर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए किनारे रख सकते हैं और खुद से जुड़ सकते हैं। एक कप चाय, हल्की सी ठंडी हवा, पसंदीदा संगीत और अपने लोगों की मुस्कान, बस इतनी सी बातें शाम को खास बना देती है। अगर आज आपका दिन शानदार रहा है तो उस खुशी को दिल में सजो कर रखिए, और अगर दिन थोड़ा मुश्किल रहा है तो याद रखिए कि हर शाम एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। कल का दिन नए अवसरों और नई उम्मीदों के साथ आपका इंतजार कर रहा है, तो इस खूबसूरत शाम में खुद को थोड़ा समय दीजिए, मुस्कुराइए और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए जो अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाती है। एंड ऑफ कोर्स कहीं मत जाइए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए कुछ अमेजिंग गानों के साथ। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का ये खूबसूरत समय और अब शुरू हो चुका है हमारे हैप्पी आवर्स। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा बीता होगा और अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स होने का, थोड़ा मुस्कुराने का और खुद को खुशियों से भर लेने का। हैप्पी आवर्स का मतलब सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं है बल्कि ये वो पल है जब हम दिन भर की टेंशन को पीछे छोड़कर अपने लिए कुछ अच्छे पल चुराते हैं। कभी अपने पसंदीदा गाने सुनकर, कभी दोस्तों से बातें करते हुए, कभी बस शांति से चाय पीते हुए। वैसे भी जीवन में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती, कई बार छोटी छोटी बातें ही हमारे चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ले आती है। किसी अपने का मैसेज, किसी की दोस्त को फोन या फिर कोई पुरानी प्यारी याद, ये सब हमारे हैप्पी आवर्स को और भी खास बना देते हैं। तो आज ये शाम खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आप अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकालेंगे, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आपके आसपास की दुनिया भी खूबसूरत लगेगी। अपनी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और इस खूबसूरत शाम का भरपूर आनंद लीजिए। और सुनते रहिए MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब कोई बड़ा सपना पूरा होगा तब खुश होंगे, जब कोई बड़ी सफलता मिलेगी तब सुकून मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि कई बार छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ा रिलैक्सेशन लेकर आती है। सुबह की ताज़ी हवा, पसंदीदा गानों की धुन, किसी अपने का हालचाल पूछ लेना, गर्म चाय की प्याली या फिर दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ पल खुद के साथ बिताना, ये छोटी सी बातें हमारे मन को कितना सुकून देती है शायद हम महसूस ही नहीं कर पाते। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाए तो तनाव अपने आप ही कम होने लगता है, मन हल्का महसूस करता है और जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। आज के शाम एक पल के लिए रुकिए और सोचिए आज आपको किस छोटी सी बात ने मुस्कुराने की वजह दी है। शायद किसी दोस्त का मैसेज, किसी बच्चे की प्यारी सी मुस्कान या फिर आपका कोई छोटा सा काम पूरा हुआ हो। यही छोटी छोटी खुशियां हमारे दिन को बेहतर और दिल को रिलैक्स बनाती है। खुशियों को बड़ा या छोटा मत समझिए, हर खुशी की अपनी ही एक अहमियत होती है। जितना हम इन छोटे पलों को जीने लगेंगे उतना ही जीवन में सुकून और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप सुनते रहिए एमजे मनाड़ी पोनी रिफिल्म, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी कुछ गाने सिर्फ संगीत नहीं होते बल्कि भावनाओं की एक खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। ऐसा ही एक सदाबहार गीत है, दो दिल मिल रहे हैं। ये गाना प्यार की उन अनकही भावनाओं को बहुत खूबसूरती से बयां करता है जिन्हें शब्दों में कहना हमेशा आसान नहीं होता। जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स और उनके सपने एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, तब एक खास रिश्ता बनता है। ये रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और अपनेपन से मजबूत होता है। दो दिल मिल रहे हैं हमें यही एहसास दिलाता है कि सच्चा प्यार हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वो खामोशी में भी महसूस किया जाता है। एक छोटी सी मुस्कान, एक नज़र या किसी का बिना कहे आपकी बात समझ जाना, यही तो रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात होती है। आज के इस प्यारे से शाम में अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा खास इंसान है तो उसके लिए दिल से शुक्रिया कहिए, क्योंकि रिश्ते हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और हमें हर मुश्किल सफ़र में हिम्मत देते हैं। प्यार और अपनापन भरे इसी एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं जब हम बचपन में अपने पापा के जूते पहनकर चलने की कोशिश करते हैं तो वो हमें सिर्फ बड़े जूते नहीं लगते बल्कि एक खेल जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आने लगता है कि उन जूतों का साइज ही बड़ा नहीं था बल्कि उनके साथ जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी बहुत बड़ी थी। पापा अक्सर अपनी परेशानियों को चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी अपने संघर्षों का हिसाब नहीं बताते। बचपन में हमें लगता था कि पापा हर समस्या का हल जानते हैं, लेकिन बड़े होकर समझ आता है कि उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब जीवन में जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आने लगती है तब एहसास होता है कि पापा ने कितनी मजबूती और धैर्य के साथ हर परिस्थितियों को संभाला हुआ है। तब समझ आता है कि उनके जूतों में चलना इतना आसान नहीं था। अगर आपके पापा आपके साथ है तो आज उन्हें एक बात ज़रूर बताइए कि आप उनकी मेहनत और त्याग की कितनी कद्र करते हैं, और अगर किसी वजह से वो आपके पास नहीं है तो उनकी दी हुई सीख और प्यार हमेशा आपके साथ रखिए। पापा सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो मजबूत छत होते हैं अपने परिवार की और अपनी। तो आप कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपना शहर बहुत साधारण लगता है। वही गलियां, वही रास्ते, वही लोग, सब कुछ रोजमर्रा का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और किसी काम, पढ़ाई या सपनों की तलाश में अपना शहर छोड़ देते हैं, तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। अचानक से वो चाय की दुकान याद आने लगती है, जहाँ दोस्तों के साथ घंटों बातें हुआ करती थी। वो मोहल्ले की गलियां, शाम की रौनक, त्योहार की चहल पहल और अपने पन से भरे चेहरे, सब कुछ दिल के बहुत करीब लगने लगता है। बड़े होने के बाद शायद हमें शहर की इमारतें नहीं बल्कि वहाँ बिताए हुए पल याद आते हैं। माँ की आवाज़, पापा का इंतज़ार, दोस्तों की हंसी और बिना किसी वजह के घर लौट आने की खुशी याद आती है। दूर किसी नए शहर में रहते हुए जब कभी मन थोड़ा उदास होता है तो यादों का वही पुराना शहर दिल में दस्तक देता है और तब एहसास होता है कि हम सिर्फ एक जगह नहीं छोड़कर आए थे बल्कि अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा पीछे छोड़कर आए थे। लेकिन यही यादें हमें ताकत भी देती है, ये याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कहाँ है और हमारे अपने कौन है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, दिल का एक हिस्सा हमेशा अपने शहर में रहता ही है। आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM University मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी जगहों पर जाते हैं और कितने अनुभव अपने साथ जोड़ते चलते हैं। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब रहती है। कुछ पल इतने खास होते हैं कि सालों बाद भी उन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कान आती है। बचपन की शरारतें, स्कूल के दोस्त, परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पल, किसी खास इंसान के साथ की गई बातें या फिर जिंदगी की छोटी सी जीत, ये सब यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। यादों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। जब हम खुश होते हैं तो ये हमारी खुशी को और बढ़ा देती है, और जब हम थोड़ा उदास होते हैं तो यही यादें हमें हिम्मत और सुकून देने का काम करती है। इसलिए जिंदगी में हर पल को जी भर कर जीना चाहिए, क्योंकि आज का ये पल कल की एक खूबसूरत याद बन सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में यही यादें हमें मुस्कुराने की वजह दे। तो आज इसी प्यारी सी शाम में अपनी किसी ऐसी याद को ज़रूर याद कीजिए जिसने आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया हो। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: देखते देखते हमारी ये खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। मैं आरजे मनीषा आपका स्वागत करती हूँ दिल से ओनली ऑन एमजे 90.8 FM। बातों गीतों और प्यारे प्यारे एहसासों से सजी ये शाम आपके साथ कब गुजर गई पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि आज का ये साथ आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा और दिन भर की थकान को थोड़ा कम करने की मददगार रहा होगा। अगर हमारी बातों ने आपको कुछ पल के लिए भी सुकून दिया है तो हमारा ये सफर सफल हो गया। दोस्तों, हर शाम हमें ये सिखाती है कि चाहे दिन कैसा भी हो उसके अंत में खुद को थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए और जो अधूरा रह गया उसे कल के लिए एक नई उम्मीद के साथ छोड़ दीजिए। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, नए अवसर लेकर आती है, नई उम्मीद लेकर आती है। इसलिए बीते हुए दिनों की चिंता मत करिए, उन्हें यही छोड़ दीजिए और आने वाले कल का स्वागत पूरे स्वैग के साथ कीजिए। अब मुझे आपसे विदा लेना होगा, लेकिन ये विदाई सिर्फ आज की शाम की है। कल फिर मिलेंगे नई शाम में नई कहानी और नए गानों के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar।

काका, ओ मामा, ओ भैया, ओ दीदी, आप ऐसे कह रहे हो, आपने अपने गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है क्या? चेक कीजिए, नहीं लगाई ना, कब लगाओगे? समझते नहीं है यार। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। है सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हर एक गाड़ियों को कंपलसरी हो चुका है। 2019 के 1 अप्रैल से ये शुरू हो गया था, तो अब तक लगा था कि हर कोई अपने गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा देगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास बहुत टाइम है या तो बहुत बिजी है, लेकिन उन्होंने भी अब तक अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगाई है। तो आप प्रशासन एकदम स्टिक मोड पर आ चुका है। इसके पहले भी आया था, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सोच रहे थे कि लोग हैं, इंसान है, थोड़ा लेट हो जाते, लगा देंगे। बट अब तक बहुत सारे लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, तो आखिरी आपको वक्त दिया है, 30 जून के पहले आप अपनी गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगा दीजिएगा। फिर 1 जुलाई से जिस गाड़ियों पर है सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रहेगा, उस गाड़ी पर कार्रवाई होगी और आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है बोलकर, पता चल गया ना, तो ये लगाइएगा। इस नंबर प्लेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। HSRP ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट के हिसाब से आप उस सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट चेंज कर सकते हो। फिर मत कहना कि यार मैं तो भूल ही गया, भूल जाओगे तो बड़ा पछताओगे, फाइन भी भरना पड़ेगा, समझे? स्टे ट्यून्ड।

यार मुझे तो आज ही पता चला कि ब्लड का भी ब्लैक मार्केट होता है. सच्ची कह रहा हूँ, म्हणजे रक्ताचा पण काळा बाजार. यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं रहा तो दो नंबर के तरीके से ब्लड अवेलेबल करते हैं. अब यही चीजें बहुत बढ़ रही थी, इस वजह से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, इसे कहते हैं ई रक्तकोश.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटीमध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 99.
3: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

आपको पता है आने वाले वक्त में यानी कि 10 से 15 दिन में अपने शहर में कितने शादियां होने वाली है? यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। तकरीबन 13 से 14 दिन के अंदर ना तो अपने छत्रपति संभाजीनगर में 2000 से भी ज्यादा शादियां होने वाली। जी हाँ, और टोटल मिलाकर 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस अपने शहर में होने वाला है। भाई साहब, 13-14 दिन में 2000 से ज्यादा शादियां, कारण की अधिक मास संपला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा लग्न सराई सुरू झाली आणि 2000 लग्नामध्ये तुमचा नंबर आहे का यावेळेस? क्या इस बार भी आपण म्हणणार नाही करूयात ना, पुढच्या वर्षी करूयात? भाई साहब, आप अगर शादी कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस बार भी इन 2000 शादियों में आपकी भी शादी रह गई और इस साल भी आप सिंगल रह गए। अगर आपकी एज 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गए तो आप सिंगल नहीं रहते, आप बिना शादी के रह जाते हो। तो यह कैसा दुनिया का देखने का नजरिया है भाई। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का, बट मजा आती है ना, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ भी आजकल हो रही है। जब भी घर पर जाओ, कोई रिश्तेदार आए, कोई आंटी आई, कोई अंकल आई, तो एक ही सवाल पूछते हैं, हाँ शादी कब कर रहा है? ये चीज आपके साथ भी होती है ना, जब भी करना सोच समझ के करना शादी। इतना ही मैं कहूंगा, अगर इन 2000 शादियों में आपका नंबर होगा तो मुझे भी इनवाइट कीजिएगा, हम तो आ ही जाएंगे भाई बेगानी शादी में। अब्दुल्ला दीवाना, स्टे ट्यून्ड।

लेट्स टॉक अबाउट फिल्मी बातें. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है. एंड फिलहाल फिल्मों के साथ OTT सीरीज की भी बहुत चर्चाएं हो रही है. ग्राम चिकित्सालय TVF ने बनाई हुई ये सीरीज थी. इसका पहला पार्ट बहुत अच्छे चला, इतना सुपरहिट तो नहीं हुआ था लेकिन बहुत अच्छी इसने पॉपुलैरिटी हासिल की थी. तो अब इसका सीजन 2 भी आ चुका है, तो जाकर आप देख सकते हो. और पंचायत सीजन 5 कब रिलीज होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है. TVF ने अब तक इसका कोई जवाब तो नहीं दिया है. कहा गया था कि जून या जुलाई में रिलीज डेट अनाउंस होगी लेकिन अब तक तो कुछ रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. कमिंग सून सही बता रहा है. और इसी के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 रिलीज हो चुका है, तो ये भी आप देख सकते हो. इसका सीजन 3 आ चुका है. मैंने तो इसका अब तक फर्स्ट और सेकंड सीजन भी देखा नहीं है. रिसेंटली रिलीज हो चुके हैं 2 सीरीज, ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 एंड हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3. तो जाकर देखिएगा कैसी लगी, ये भी जरा मुझ तक आप पहुंचा सकते हो DMK जगह इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर. एंड स्टे ट्यून्ड.

आरजे अदनान और आपको मैं वीआईपी बनने का एक चांस दे रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं, मेटा आपको वीआईपी बनने का चांस दे सकता है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पर आपको वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके साथ आपको मिलने वाले बहुत सारे फैसिलिटीज जिसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप वीआईपी हो। जैसे इंस्टाग्राम पर आपको यूज करने को मिलेगा एक्स्ट्रा क्रिएटर्स टूल्स, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, फेसबुक पर ऑडियंस इनसाइट्स और व्हाट्सएप पर प्रीमियम स्टिकर्स और एक्स्ट्रा चैट पिंस के ऑप्शंस। और एआई के शौकीन लोगों के लिए भी स्पेशल प्लान हो सकते हैं जहां एडवांस एआई टूल्स और वीडियो क्रिएशन जैसे फीचर आपको मिल सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी नॉर्मल चैटिंग, रील्स देखना और मीम्स शेयर करना वैसे ही फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल दुनिया में वीआईपी एंट्री चाहिए तो फिर पॉकेट को थोड़ा प्रीमियम फील करवाना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप कौन सा प्लान यूज करोगे, फ्री प्लान या फिर सब्सक्रिप्शन वाला प्लान, बताइए जरा। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
1: मोहन और सीमा बचपन के दोस्त थे, दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे, हर छोटी छोटी बात पर हंसी ठिठोली करते थे। एक दिन मोहन ने सीमा से कहा, क्या तुम कभी मुझे बिना जाने बिना पूछे अपना हाथ थाम पाओगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे हमेशा सच बोलोगे तो मुझे कोई शक नहीं होगा। वो दिन आया जब मोहन को पता चला कि उसे सीमा से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था अपनी दोस्ती खोने से, जैसे आप लोग भी डरते हो ना आपकी दोस्ती खोने से। फिर एक शाम आई जब मोहन ने सीमा को गुलाब का फूल दे दिया और कहा, तुमसे ज़्यादा खास कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सीमा ने गुलाब का फूल लिया और बस इतना कहा, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होना। दोस्ती से शुरू हुआ प्यार अब दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
0: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, आयओटी, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: हाँ,
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
1: क्या है?

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।